0: समयको ख्याल राखौं। 6 बज्यो।
1: खरो विषयमा चरो बहस, नेपाली बहस।
2: यस नेपाली बहसका साथमा प्रीति तयारी चाउचाउ।
3: ग्लोबल आईएमई बैंक, सबैका लागि बैंक।
4: डिसोम फाइबर नेट।
5: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
6: टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ।
7: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.

0: हजार अन्ठानब्बे चौध चौरानब्बे पच्चिस तथा हजार।
1: सम्पर्क स्थान माई मेडिकल नवीन चौक इलाम बजार।
0: सम्पर्क नम्बर 0027523165।

0: ब्रेक अहिले ठीक 8 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी